0: एक्सप्रेस गोर्खा रेडियो।
1: यसले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुर्याउँछ। हाम्रो खुसी, हाम्रो काम, हाम्रो सम्बन्ध यी सबैलाई प्रभावित पार्दछ। यो हाम्रो आँखा अगाडि नै भएर पनि पूर्ण रूपमा लुकेको हुन्छ। उत्पीडन, डर, धम्कीपूर्ण व्यवहार र भेदभाव, यी कुराहरू फौजी सेवामा कदापि स्वीकार्य छैनन्। तसर्थ डिफेन्स एन्टी बुलिङ हेल्पलाइन सेवामा हाजिर छ, किनकि सम्मानित र मर्यादित व्यवहारमाथि सबैको समान अधिकार हुन्छ। यो निशुल्क छ, गोपनीय एवं चेयर अफ कमान्डबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ। यसको मद्दत लिनको निमित्त युके भित्रबाट कुनै पनि समयमा सम्पर्कको लागि नम्बर छ 08007810334, र यदि तपाईँ युके बाहिर हुनुहुन्छ भने सम्पर्कका लागि नम्बर छ 01683025355। साथै डिफेन्स कनेक्टमा गएर बिएसडी हेल्पलाइनको खोजी पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
2: पोखराको पर्यटन क्षेत्र अहिले चलायमान बनेको छ। मध्य पूर्वको तनावका कारण तेस्रो मुलुकबाट पर्यटन आगमन घटे पनि छिमेकी मुलुक भारतीय पर्यटकका कारण पोखरा र यस क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढेको हो। पोखरामा यस वर्ष अहिलेसम्मकै धेरै भारतीय पर्यटक घुम्न आएका छन्। पर्यटकका कारण पोखरादेखि मुस्ताङसम्मको पर्यटकीय गन्तव्यहरू भरिभराउ हुने गरेको छ। भारतका विभिन्न सहरमा बढ्दो गर्मीबाट राहत खोज्दै नेपाली पहाडी गन्तव्यतर्फ पर्यटकको आकर्षण बढेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पोखराको लेकसाइड क्षेत्रमा देखिएको हो, जहाँ पछिल्ला दिनहरूमा भारतीय पर्यटकको बाक्लो उपस्थितिले पर्यटन बजार फेरि एकपटक चलायमान बनेको छ। होटल, रेस्टुरेन्टदेखि पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा उत्साह थपिएको छ। भारतीय सरकारले समेत छिमेकी देशमा भ्रमणका लागि आफ्ना नागरिकलाई प्रोत्साहित गरेको छ। भारतीय पर्यटकले पोखरा शीतल भएको र यहाँको सुन्दरताले आफूहरू लोभिएको बताउने गरेका छन्। नेपाल र भारतबीच धार्मिक हिसाबले समेत एकरूपता रहेकाले धार्मिक पर्यटक समेत आकर्षित भएको उनीहरूको भनाइ छ।
3: हम गुजरात से आए भावनगर और ये नेपाल के लोग है अच्छे। यहाँ से 5 दिन हो गए, आज निकलने वाले हैं। साथ में हमारा 20 का ग्रुप है, 12 लेडीज है, 6 जेंट्स है।
4: कहाँ कहाँ घूमे आए?
3: काठमांडू आए, यहाँ पोखरा देखा है,
5: अयोध्या,
3: काशी विश्वनाथ सब देखे है। लेकिन यहाँ का सिटी अच्छा है,
4: यहाँ का खास मौसम हो रहा है,
3: मौसम बहुत अच्छा है, पानी बहुत शुद्ध है।
6: घूम रहे हैं अभी तो, निकले हैं अभी, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा लगा। बहुत जब उसमें घुसे हैं, कौन सा जगह है, अरे पोखरा ना, तो उसी में तभी से अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ वहाड़ देख के और मतलब इतना खूबसूरत लग रहा है कि क्या बताएं। जो इंडिया तो मतलब है, लेकिन इधर का जो खूबसूरती है वो उधर नहीं है, इंडिया में नहीं है। बहुत खूबसूरत जगह है, और जब उसमें से धुआं जैसे बादल का वो उठ रहा था, वो सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश हो रही थी, हर जगह जगह जगह पानी गिर रहा था, वो सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। पहले तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे ठीक लगने लगा, बहुत अच्छा लगा।

विपुल छेत्रीको ए साथी मिठो गीत सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। समय अहिले ब्रुनाईमा बिहानको 8 बज्नको लागि 15 मिनट बाँकी रहेको छ। अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ आजको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दरको। युएस डलर एकको खरिद दर 150 रुपियाँ 64 पैसा, बिक्री दर 151 रुपियाँ 24 पैसा। युरो एकको खरिद दर 172 रुपियाँ 67 पैसा, बिक्री दर 173 रुपियाँ 36 पैसा। पाउन स्टर्लिंग एकको खरिद दर 199 रुपियाँ 15 पैसा, बिक्री दर 199 रुपियाँ 95 पैसा। स्विस फ्रांक एकको खरिद दर 187 रुपियाँ 34 पैसा, बिक्री दर 188 रुपियाँ 9 पैसा। अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिद दर 105 रुपियाँ 54 पैसा, बिक्री दर 105 रुपियाँ 96 पैसा। कनेडियन डलर एकको खरिद दर 106 रुपियाँ 62 पैसा, बिक्री दर 107 रुपियाँ 5 पैसा। सिङ्गापुर डलर एकको खरिद दर 116 रुपियाँ 70 पैसा, बिक्री दर 117 रुपियाँ 17 पैसा। जापानिज यन 10 को खरिद दर 9 रुपियाँ 36 पैसा, बिक्री दर 9 रुपियाँ 40 पैसा। चाइनिज युआन 1 को खरिद दर 22 रुपियाँ 25 पैसा, बिक्री दर 22 रुपियाँ 33 पैसा। साउदी अरेबियन रियाल 1 को खरिद दर 40 रुपियाँ 14 पैसा, बिक्री दर 40 रुपियाँ 30 पैसा। कटारी रियाल 1 को खरिद दर 41 रुपियाँ 33 पैसा, बिक्री दर 41 रुपियाँ 49 पैसा। थाई भाट 1 को खरिद दर 4 रुपियाँ 59 पैसा, बिक्री दर 4 रुपियाँ 61 पैसा। यूएई डिरहम 1 को खरिद दर 41 रुपियाँ 1 पैसा, बिक्री दर 41 रुपियाँ 18 पैसा। मलेसियन रिंगित 1 को खरिद दर 36 रुपियाँ 59 पैसा, बिक्री दर 36 रुपियाँ 73 पैसा। साउथ कोरियन वान 100 को खरिद दर 9 रुपियाँ 79 पैसा, बिक्री दर 9 रुपियाँ 82 पैसा। स्विडिस क्रोनर 1 को खरिद दर 15 रुपियाँ 72 पैसा, बिक्री दर 15 रुपियाँ 78 पैसा। डेनिस क्रोनर 1 को खरिद दर 23 रुपियाँ 10 पैसा, बिक्री दर 23 रुपियाँ 19 पैसा। हङकङ डलर 1 को खरिद दर 19 रुपियाँ 22 पैसा, बिक्री दर 19 रुपियाँ 30 पैसा। कुवैती डिनार 1 को खरिद दर 490 रुपियाँ 21 पैसा, बिक्री दर 492 रुपियाँ 16 पैसा। बारेन डिनार 1 को खरिद दर 399 रुपियाँ 57 पैसा, बिक्री दर 401 रुपियाँ 16 पैसा। र अन्तमा ओमानी रियाल 1 को खरिद दर 391 रुपियाँ 29 पैसा, बिक्री दर 392 रुपियाँ 85 पैसा। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आजको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दर। अब हामी गीत सुन्छौँ एकदेव लिम्बु र सिम्पल खरेलको स्वरमा फिजेको केश।